बहु बहु बाणी निरंकार है, बहु बहु बाणी निरंकार है। तिस जेवड अवर न कोए, तिस जे

0: मानस की गत
1: हर जियो कृपा करो तुम प्यारे सतगुर दाता मेल मिलावो हर नाम देहो आधार

सबके तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर नंद वदाई तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जर

अमृत शाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा सिंह प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सोने ओ गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखहु शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखहु शरणाई सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज दर्शन परस आय गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसम दी नूर अर सोह कुर सोह चटिया

हर हर नाम ध्याए, नानक नाम निरंजन गाइए, पाइए सर्ब निधाना, कर कृपा जिस दे स्वामी, बिरले काहू जाना, नानक नाम निरंजन गाइए, पाइए सर्ब निधाना, कर कृपा जिस दे स्वामी,

जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म बहाले उथे सच्चे ही सच निबड़ै चुण वख कढ़ै जित मालिया थौन पाइन कूड़िया मोह काले दो दुख चालिया त्रिणार ते सिजण गए।

0: सच बुझाया सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
1: ओड़ी नदर करे जे अपने त नदरी सतगुरु पाया एह जियो बहुते जनम भ्रमया ता सतगुरु शब्द सुनाय सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनया लोक सबाय सतगुरु मिले सच पाया जिने विचो आप गवाया जिने सचो सच बुझाया।

तीर्थ नावह अर्चा पूजा अगरवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजे।

पत पवे चंगी सी के पौड़ी तुर कर्म जिनक तुद पाया ता तिनी हसन ते आया न जनता के वस किछ नाही तुद वेकी जगत उपाया इकना नू तू मेल लह।

नात कहाँ लोग गारो, शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात रह ना बिचारो, रथ ना सो न गास सिंघासन, शिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न बीर न मीर न खानम, संग न को दिष्ट निहारो, कोट न ओस न कोट न छोटा, करत बिका दहु कर चारो, मित्र न पुत्र करतर साजन साख, उल्टत जात बिरह की शारो, दीन दयाल पुरख प्रपूरण, छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो, हे भगवंत कृपा कर तारो।

जस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत इसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर।

काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिन सजाहे हर नाम उच्चारी। इशनान दान तापन सच किरया, चरण कमल हृदय प्रबतारी। साजन मीत सखा हर बंदप, जीतान प्रभ प्राण अदारी।

बिचरै अनेक शास्त्र बो खटुआ, पसम लगाए तीरथ बो भ्रम ते, सुखम दे बंदे बो जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यों प्रेम।

पायो। त्रिते ते माण्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो।

अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय हुवे सिफत खसामदी नूरे अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जानम जानम दी सजन सच्चा पाते सा हो सिर साहद जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावे सा सजन सच्चा पाते साहु सिर साहदा जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावे साहु सत

आहे। सहसा रोग ना छोड़ई, दुख ही मह दुख पाहे। नानक नदरी बखसले, सब दे मेल मिलाहे।

मैं हर दर्शन सुख होई। राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पयाम।

0: गौ ब्राह्मण को कर लाव हो गोबर तरन ना जाई तोती टिका तै जप माली धार में शाखाई अंतर पूजा पढ़े कतेबा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरन दा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छुरी वगायन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पियावे ओही साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मत्थे टिक्का तीड़ धोती कखाई हाथ छूरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेच तान लै पूजे पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एह अन साडा पिटे तन पिटे पीड़ करीन मन जुठे चुली परीन कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पाई पौड़ी चिते अंदर सब को देख नदरी हेठ चलांदा आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वडमेदनी सिरै सिर नदर पट्ठी जे करे सुलताना कहो कराएंदा डर मंगन पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा
0: पौड़ी चिते अंदर सब तो वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड़े आईया आपे ही कर्म कराएंदा वडो वडा वद मेज ने सिर सिर धंधे लाएंदा नदर पट्ठी जे करे सुलताना कहो कराएंदा धर्मगण तिखना पाएंदा।